फल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगीधर पाछा काल दी गति अगात कथन करते हैं। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहब ते ऊने साहब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर, उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीन लई, ज्यों पानी पीन लगदा है तां इसते मुख विच मच्छी फस जांदी है। दम रुक गया, ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा बाज ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई, ते ज्यों इस मच्छी नू चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे सिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने, जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही जबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखे कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी। जो निशाना मारिया मिर्गनी नू, ता मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होन वाला सी, क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी, उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नू दस्या, शिकारी नू दस्या, ते शिकारी ने झट तलवार कढ़ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उसे वेले शरीर छड़ गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए। इना चौवां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घरवाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर

कैसा मरना हो। जेकर साहब मनो ना विसरे तां सहला मरना हो। हजूर कहंदे न मरना सच है, जीवना झूठ है। ऐ मनुख मरने नाल तां जगत डरदा है, गुरमुखा नूं कहदा भई डर है। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईए पूर्ण परमानंद। जिन्हां ने आके श्वास श्वास भजन कीता है, सिमरन कीता है, वो ता बाजी जीती बैठे हन, वो ता पुग चुके हन, वो ता जीवन मुक्त हन, उन्हां नूं मरने तो डर नहीं। गुरु अमरदास पातशाह कहिंदे हन, जिहड़ा हुक्म बुझ गया है गुरु दा, संसार ते आउण दा जिहनूं पता लग गया है भई मैं क्यों आया, ते फिर उसने सेवा सिमरन परपकारी जीवन बिता दिता है। गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्म है बूझे सोए, नानक ऐसी मरनी जो मरे तां सद जीवन होए। ओ सदा जीवदे हन जेड़े गुरु दे हुक्म विच निर्मल पाओ विच अपना जीवन बतीत करदे हन। भाई साहब नंद लाल जी कहंदे हन कि गुरमुख हमेशा जीते हैं, मरते कभी नहीं वो, जिनकी जबां पे हर दम सतनाम वाहिगुरु है। जो हर वेले ईश्वर भगती विच जुड़े हुए हन, जो हर वेले अपने मालक दे चरणां विच जुड़ के जपदे हन श्री वाहिगुरु, फिर भाई उना नू उना दा आउना भी सफल है, उना दा संसार तो जाना भी धनता दे योग है। ओ सदा जीउंदे हन, नाम रहो साध।

तू रहो रहो गुर गोविंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुर मंत। तो निरंकार ने जितने श्वास दिते हन भाई, ओ था उतने ही रहने हन। जे भले कर्म करिए, भले कर्म करन नाल ए साडे श्वास घट खर्च होंदे हन। भोग विलास विछियां विच दुगने श्वास खर्च हो जांदे हन, जिस करके उम्रा घट जांदी है। ते जे सतपुरशां दी संगत रहे, गुरु की संगत विच मन करके भी तन करके भी जाग के नाम दा अमृत पींदे रहिए, तां ए श्वास जमा रहंदे हन, घट खर्च होंदे हन। फिर जिस तरह माया बैंक विच पई होवे तां विहाज नाल मिलदा है, इसे तरह वधदे रहंदे हन जदों चंगे कर्म कोई करदा है। उम्र उतनी हुंदी है, श्वास उतने ही हन तेरे खर्च करन विच। कई मनुख कुकर्म करके अपने श्वासां नू छेती जाया कर जांदे हन, कई एक एक श्वास नू जप जप के सफल कर लैंदे हन। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु, पर श्वास उतने ही हन जितने निरंकार ने दिते हन। और क्या जानना किव मरेंगे, कैसा मरना होए, ये कोई पता नहीं है। कारण बनदा ये कारण निरंकार नू पता है। ब्यास जी दे पास एक बच्चा सेवा करया करदा सी, आके ते ब्यास जी नू बड़ा चंगा लग्या। ते जदों उसते मस्तक दियां लकीरां देखियां ना, ते समझ गए भाई इहदी ते उम्र ही थोड़ी है, पर हर वेले सेवा विच लगा रहिंदा सी। ते मन विच सोचिया भई अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दे अगे सिफारिश कर दईए, इहदी उम्र वधवा दईए, चलो लै चलदे हां। भगवान शंकर दे पास लै गए कि ओ धरती नू लै करदा है, क्योंकि एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। उम्र वधवा आईए, जदों इन्हां दे पास गए तां आख्या वही सृष्टि दे रचन वाला तां ब्रह्मा है, उदे कोल चलदे हां। मैं कुछ नहीं कर सकदा, मैं तां हुक्म अनुसार लै करदा। ब्रह्मे दे पास गए, आप उत्पत्ति करदे हो, इहदी कुछ उम्र वध जाए तां। कहण लगे इह काम विष्णु भगवान दा, ते जां उत्थे पहुंचे। ओह कहण लगे इह तां विधाता ने जो लिख दिता है ना, ओह ही जो कुछ करना चाहे उही कर सकती है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। ब्रह्मा विष्ण महेश तिन्ने देवते नाल तुर पे सिफारिश लई, ते भगवान व्यास जी भी नाल हन। ते जदों विधाता दे पास गए, बच्चे नू बाहर बिठाया, आप अंदर चले गए सिफारिश करन लई, तां विधाता जो सी ओ कहण लगी भई गल ए है, पर बाहर जाके पहला बच्चा तो वेखाओ जीवदा भी है, क्योंकि मैं तो उसकी कर्म रेखा ही ऐसी लिखी सी कि जदों ब्रह्मा विष्ण महेश इकट्ठे होणगे तां उदी मौत होवेगी, नहीं तो कदी उसकी मौत हो ही नहीं सकती। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु, जिदी सिफारिश करन लई आए सी ना, ओ सगों मौत दा कारण बन गए। तो मौत कारण बन जांदी है, बुला लैंदी है अपने पास। इसलिए गुरु अमरदास पातशाह गरीब नवाज कहंदे हन, भाई किसे नूं कुछ पता नहीं कदों मरना है, किथे मरना है, ते मरण दा कारण की बनेगा। इसलिए साहिब नूं सदा चेते रखना है। अकाल पुरख वाहिगुरु चेते होवेगा तां भाई अंत वेले भी तैन चेते च आवेगा। उच्चारण करो श्री महापुरख बचन करया करदे सन भाई, गुरु नानक ने एवें नहीं सानू अमृत वेला बख्शिश कीता, ऐ जीव अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज बचन करया करदे सन कि अमृत वेले, इसलिए गुरसिखां नूं हुक्म है अमृत वेले जाग के इशनान करना, नितनेम करना, गुरु दे चरणां विच जुड़ के
ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਟਿਕਟ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੌਂ ਕੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਮਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਗੀਦਾ ਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਭੁਲਾਓ, ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ।

जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत गोद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एक संपैना सुहेद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को।

मैं मन को मान न त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ। जम को डंड परयो सिर ऊपर, तब सोवत तै जाग्यो, कहा होत अब कै पछताए, छूटत नाहन पाग्यो। एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सुफल जन्म नानक तब हुआ, जाओ प्रभ जस मह पाग्यो।

जे राक्षसां तो देवता नहीं बनाया तो फिर मेहर किस काम। पशु प्रेत मुगध को उतारे, पाहन पार उतारे, जेड़े पत्थर हिरदे सन पाहन सन, वली कंधारी वर्गे हंकारिया नू भी तार दिता, नीवा कर दिता। मन नीवा हो जावे तो रब दे नजदीक हो जाएगा। धन गुरु नानक पातशाह जिथे जिथे भी वेख्या के किसे कोलों सृष्टि नू दुख पहुंच रहा है, ता आपने पापी नू बुलाया नहीं, घर जाके तारिया, घर जाके मेरा कीतिया। धन गुरु नानक पातशाह संसार नू तारदे होए देव गंधार शहर विच गए। ये बड़ा जंगली अते पहाड़ां दा इलाका सी। ये लोग जीवां नू खांदे सन, कोई भी मनुख इन्हां दे हाथ लग जावे उसका मांस खाना। किस नगरी दा राजा देवलूत जो हर दम खून दा प्यासा रहिंदा सी, लखां देव इस दे अधीन सन। जेड़ा बंदा इस दी नजर विच आ गया ओ कदी बच नहीं सकया। इना दे अत्याचारां दा सारे इलाके विच बड़ा भय सी। गुरु नानक सच्चे पातशाह जगत जलंदे नू धारदे होए उस जंगल विच चलदे चलदे देव गंधार पहुंचे। मर्दाने बेनती कीती, महाराज बड़ा चंगा है, कुछ दिन ठहरांगे शहर विच, पहुंच के मेरी भूख भी मिटेगी, कोई पदार्थ भी मिलनगे शकन नहीं। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे मर्दानिया के लोग बड़े खतरनाक।

गुर अंगद की ते पुकारे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हठ के नाम विचारे।

हमारी जेबा एक रुपया हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जाए हर तुम बड़ अगम अथाह।

सरोही नमो श्री भगवती बढ़ली सरोही। ये शस्त्रां की पूजा है। जिस वेले योधे रण विच जूझ दे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र की पूजा उचार दे ने ओ शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने भगौती बडैली सरोही ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र की पूजा है। गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री भगौती बडैली सरोही नमो श्री

स्वै शुभता हाथ सोही शुभता हाथ सोही नमो लोहे की पोत का झलहे तहंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यों बलंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यों बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बान गंगा तरंगी तेरे शाम है मोख दाती अपंगी धीरे शाम है मोख दा

खंडोखर्ग अस्त्रपान खंडोखर्ग तुक्त तवर अर्ते अस्त्रपान खंडोखर्ग तुक्त तवर अर्ते सैप सरोही सैरी यही हमारे पीर सैप सरोही सैरी यही हमारे तीर तू ही सैथी तू ही तवर तलवार

0: भाई नंदलाल जी
1: ताल बे मौला
0: हमेशा जिंदा अस्त
1: हमेशा जिंदा अस्त ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

जम त्रास मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, कल काल नसे हर सर धैये, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत परापत होए।

चार ताल दे अंदर ए रीतबद्ध है। इस नूं ध्रुपद ताल भी कहिंदे ने, चार ताल भी कहिंदे, ध्रुपद ताल भी कहिंदे। श्रवण करना

0: चार ताल के अंदर ए जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण कीता हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो तरणा निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निज की जैसे उचार पुजारी, नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। ये जो जंग विच फतेह हुई है ये किसी आदमी की नहीं, ये वाहिगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि खालसे की फतेह चार ऊंट विच होएगी, चढ़दे तो लेंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्हां दे अपने शब्द सरवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया लंक

0: देखो खालसे की फतेह चार कुंड के अंदर
1: रूम नाप तू बजाओ शाम मोहरा चला सुनो नंदलाल एहसास प्रगट करूं मैं अपना राज
0: नंदलाल दे नाल गुरु साहब दे वचन हो रहे भाई नंदलाल साहब
1: सुनो नंदलाल एहसास प्रगट करूं मैं अपना राज
2: चार वर्ण
1: एक वर्ण कराऊं वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं
0: चार वर्ण एक वर्ण करा वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
1: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज देख खालसे को

0: एक खालसे को पुरख जाएंगे भाव, देख खालसे को पुरख जाएंगे
1: भाव, एक चले सिंह
0: झूलन नेगे हस्ती साजे, झूलन नेगे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौब धुके सवा लाख जब धुके पलीता, सवा लाख जब धुके पलीता, तबे खालसा उदे

राग मारू एक भी आत्मा विच अणख जाग उठती है, क्योंकि उत्थे केवल सच टिकिया होता है। सच है निरभउ निरवैर, इसलिए स्वयं धर्म दृढ़ हुंदा है। अजेही आत्मा विच जुर्रत भर जांदी है, बेपरवाह हो जांदी है, कायरता नस जांदी है। ए है मारू दा प्रभाव, सुन कै सुध न रहे कायर की, जब बाजै धुन मारू। फिर मारू राग विच वैराग भावना दी भी प्रधानता होण करके इस नूं प्राणी दे चलाने समय गाउण दी भी प्रथा है। सो युद्धां समय अते चलाने समय इस राग नूं गाया जांदा है। एक पासे तां इस विच जोश है, दूजे पासे वैराग। जोश दी भावना विच भगत कबीर जी फरमांदे हन, सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन कै हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कभू ना छाड़ै खेत। एक वो आत्मदर्शी सूर में हन जिन्ना दे गगन नगर विच दमामे वजदे हन, अते माया तूती दी आवाज नहीं सुनदे। जीवदियां उन्हां नूं मरण दी सोझी हुंदी है, इसलई आत्मक पंथियां नूं आदेश है, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। सारी हालतां विच मारू गाव्या ताही सफल है, जे शब्द अंदर है जे पंच बहराई जित ले गए हन। गुर कै शब्द आराधी है नाम रंग बैराग, जीते पंच बहराइया नानक सफल मारू एह राग। मारू बड़ा प्रसिद्ध अते पुरातन राग है, इसनु कई नामा नाल पुकारिया जांदा है अते भिन्न भिन्न ढंगा नाल गाया जांदा है। साध संग दे चरणा विच बेनती है कि जिवें श्री दरबार साहब विच अमृत वेले तो रात तक कीर्तन दियां अठ चौंकियां दी परंपरा है, जिन्हां विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचों 31 रागां विच उचारी अमृत बाणी दा कीर्तन निर्धारित रागां विच हुंदा है, उस तों सीध लैके गुरु बख्श कीर्तन दी मर्यादा नूं मुड़ प्रचलित करन लई ही अदुत्ती गुरमत संगीत सम्मेलन एक निमाणा यतन है। शुद्ध रागां दे सरूपां नूं सर्व प्रमाणित अते प्रमाणिक रूप देण लई राग निर्णायक कमेटी बनाई गई। विद्वाना ने शुद्ध रागां दी इकसारता अते सर्व प्रमाणित प्रचलन लई शुद्ध सरूपां नूं अंतम रूप दिता। यह पहला उद्यम है, इसलिए इस विच रहियां कमियां विचार द्वारा दूर कीतियां जा सकदियां हन। राग मारू दा जो पुरातन स्वरूप गाया जांदा सी लगभग अलोप हो चुका है, उसे स्वरूप नूं मुड़ प्रचलित करन लई जो पुरातन स्वरूप निश्चित कीता गया है उस विच दोनों धैवत दोनों निषाद अते दोनों मध्यम दा प्रयोग हुंदा है। आरोह विच रिश्वत नहीं लगदा, इस दा वादी स्वर गंधार अते समाधी निषाद है। गायन समा तीजा पहर असी दलीप चंद्र बेदी जी दे अति धन्नवादी हां कि जिन्हां ने सानू मारू दा इह स्वरूप दस्या। इह ओह स्वरूप है जो पुरातन रागी रबाबी सिंह गाउंदे चले आए हन। हुण सरवण करो प्रोफेसर करतार सिंह जी पासों शब्द, मोको कोई न जानत कहियत दास तुम्हारा।

शिंदे ए मुल्क माल औरंगजेब तू दानशमंद है रूप दा सोना है मुल्क अते माल दा मालक है ते बख्शन वाला भी है शहनशाह औरंगजेब आलमी के दराए दौर अस्त दूर अस्त दी तू जहान दे तख्त नु शोभा देने वाला शहनशाह अते जमाने दा पातशाह है पर तू दीन ते काबू नहीं पा सकिया। मुकम्मल जफरनामा पढ़न तो बाद औरंगजेब दी हालत अदम होया वर्गी हो गई। पछतावे वजो उसने गुरु जी नु मिलन दा मन भी बनाया ताकि अपने सारे गुनाह नु कबूल करके अपने मन दा पार हौला कर सके पर ओ इत्थे आके भी बदनसीब निकलिया। मौत दे खूनी पंजे उस उपर झपटा मारन लगे अंतो गुरु जी नु मिलन दी रीज लेके ही जहान तो तुरदा बनिया। जिंदगी दे आखरी पला समय भी जफरनामा जित दा नगारा बन के औरंगजेब दे सिर ते वज रहा सी।

परम सम्मानीय गुरु खालसा साहब सिंह जी, आप जी बड़े प्यार साहब, श्रद्धा साहब, धन धन श्री गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਦਾਤਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਵਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। बहुत ही श्रद्धा योग कदम है। एक गल याद रखने वाली है, वो है अपने पिता का विरसा। जे असी अपने पिता के वारस हां, जायदाद असां पिता की सामने है, हक असी जताते हैं, तो फिर ये शब्द जो कहे हैं गुरु साहब जी ने क्यों जा खालसा साजिया दिखाया है, आत्म रस जो ज्ञान ही सो है खालस देव, आत्म रस जो ज्ञान ही सो है खालस देव, प्रभ में मोह में तास में रंजक नायन के। गुरु नानक जी का की प्रथा है, गुरु चेला बनिया चेला गुरु बने, इस करके कोई गुरु अते चेले में भेद नहीं रहा। एक गल होर याद रखने वाली है, गुरु साहब ने सानू गल ना लाया, अनंतपुर का वाकया याद करो, सिंह विदावा लिख के दे गए, आपे अपने घर प्रत आए, उन्होंने मरी हुई अणख जगाया कि ने घर दियां मातावां भैणां अते सिंघणियां ने। मैं जो तत विचारिया है, अगर अजकल दियां पत्नियां भैणां मातावां इस गल का प्रण कर लैण कि गुरु दे सिख अखवाण वाले अते गुरु नूं विदावा लिख के चल रहे गुरसिख अगर गुरु दे बनना चाहते हैं, अगर गुरु का अखवाना चाहते हैं, तो गुरां का हुक्म मने, ऐसी गल ना होवे। असी भुले हुए छेती घर नूं प्रत आईए ते अच्छा है, ऐसा ना होवे कि घर प्रत के फिर जिनी कुर्बानी चाली सिंघां नूं करनी पई, इतिहास आप दे सामने है। तो ऐसे दशमेश पिता जिन्होंने सानू गरीबा लताड़िया हो गले गाया, ऐसे शहनशाह मतलब भाई साहब भाई नंददास साहब जी ने जो शुभ वचन कहे हैं, आप प्यार साहब सुनो।

सास विरास भगती करने वाला अज अमृत वेले उठिया, इशनान कीता है, क्योंकि नेत्रा तो हीन है। जो सैर करन निकलिया ते रस्ता ही गुरु दरबार दा भुल गया। बाणी पढ़दिया नेत्र